0: ले जे माले शाप छ अनर ले
1: जेन गेरगेन बाचन लर ले
0: नंग हरि थनजन अनर ले
1: चप छनसा थ जे छ ना छ सि पे गा छ लेन छ जो जो कि ट्रिन जे जे छन पर सि नि अलंग ग डा पे जे सेन जो रवर गा स छ
2: या ना छ जो बो छ ᱡᱚᱠᱤ ᱛᱤᱱᱡᱤᱨᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱪᱷᱚᱝᱫᱟ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱡᱚᱵᱚ ᱪᱷᱚᱝᱪᱷᱚᱝ ᱪᱮ ᱟᱨᱟᱝᱱᱤ ᱡᱤ ᱞᱮᱝᱠᱷᱤᱵᱤ ᱜᱞᱨᱟᱞᱮᱝ ᱦᱮᱢᱚᱥᱚᱜᱞᱟᱝ ᱫᱟᱛᱟᱝᱤ ᱟᱨᱟᱝᱜᱟ ᱞᱟᱝ ᱠᱤᱱᱡᱮᱱ ᱛᱷᱟᱝᱚᱢ ᱥᱟᱜ ᱥᱛᱟᱜᱣᱟ ᱪᱷᱚᱝᱪᱷᱚᱝ ᱡᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟᱛᱮᱱᱟ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱞᱤᱱᱥᱤᱱ ᱛᱟᱛᱚᱝ ᱜᱟᱥᱠᱞᱢᱱᱟ ᱟᱨᱟᱝᱜᱟ ᱡᱚᱵᱚ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱟᱨᱟᱝᱜᱟ ᱯᱷᱟᱢᱟ ᱟᱨᱟᱝᱜᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱥᱚᱜᱞᱟ ᱠᱟᱞᱟᱝ ᱠᱟᱜᱚᱱᱮ